पता चल गया कौन सा नशा करता है, वो नए नए फूलों से मजा करता है। ये कैसा बंदा भेजा तूने दुनिया में खुदा, ऐसी गलती थोड़ी ना खुदा करता है।

0: जाए ना बोला जाए ना बोझा कोथाय खेता
1: टाइम चेक एखन समय रात 3টা
2: সবার সাথে 90.4